0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: facebook.com/fm247365
2: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
3: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.
4: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबिन जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
1: स्पेशल तो लग रही है.
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर क्विटर से जीती है बीबी जोया गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
5: This program is brought to you by
4: Try All New Vatika Shampoo, nourishes hair naturally.
5: And
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
5: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
7: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. Aise online apps aur platforms se ishtinaab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke saath le jane ke liye tarjeeh dete hain. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
10: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
11: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
12: ہماری ذمہ داری ہے.
13: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM100. 31 سال FM100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان.

Assalamu alaikum and a very very very very very good morning. Welcome to Good Morning Pakistan. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आज सुमीहा, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी हर सुबह हंसती गाती खिलखिलाती हो हमारे साथ. अपनी सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से, और कि उसने आपको एक और दिन दिया कुछ कमाल करने के लिए. हम अपने शो का आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ, और आइए पढ़ते हैं छोटी सी सूरत. अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो मैं बच्चों को बता दूं कि बच्चों को ये वाली सूरत तो जरूर आनी चाहिए. छोटी सी बहुत ही प्यारी सी सूरत है जिसका नाम है सूरह कौसर, और हमेशा जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ें समझ के पढ़ें. तो आइए सुनते हैं, मैं पढ़ती हूँ आप सुनिए सूरह कौसर का तर्जुमा. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऐ महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता की हैं, फरमाई तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो. बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है. और तो सूरह कौसर आप पढ़ते हैं, नमाज में भी पढ़ते हैं, और ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है. और तो ये महीना भी पूरा उनका, पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया, पूरी कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई है. और अल्लाह ताला बस हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अच्छे उम्मती साबित हों. राइट, और कल छुट्टी भी है 12 रबी अव्वल की, और पूरे शहर को सजाया भी जा रहा है. बच्चे बड़े एक्साइटेड होंगे कि कल छुट्टी है, और हम बच्चों के लिए कौन सा गाना लगाएं पक्की दोस्त का, बताएं जरा हमें. तो हम सालगिरह मुबारक, जिन जिनकी सालगिरह है तो सालगिरह मुबारक वाला लगा लेते हैं. ठीक है, आइए सुनते हैं.

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
2: स्पेशल तो लग रही है.
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
2: आप समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं? एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
4: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाए. तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: This program is brought to you by
5: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
7: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. 365.

0: एयरपोर्ट की जानब जा रहा है उस पर ट्रैफिक का इसका दबाव देखा जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड से वो ट्रैफिक जो आ रहा है इस वक्त सपूरा चौरंगी से लीपा चौरंगी की जानब, उसके दरमियानी रास्ते पर तामीरी काम जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, जबकि जौहर मोड़ से वो ट्रैफिक जो मिलेनियम मॉल और वहां से जो रोड ठहरा फैसल की जानब आ रहा है उस पर भी ट्रैफिक का इस वक्त दबाव है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपना टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मरीज अपडेट रहने के लिए
1: This traffic update was brought to you by FM 100.

0: Capital Bank, easy wala bank.
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
1: स्पेशल तो लग रही है.
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
1: स्पेशल तो लग रही है.
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रूपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
6: वाटिका हफ्तेवार लकी ड्रॉ विनर
7: क्वेटा में गोल्ड क्वाइन खटिया है बीबी जोया.
6: हाँ तमाम भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, सोने जा सिक्का ऐ बेशुमार इनाम खटे संगो था. बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करो ऐ ढेर सारा इनाम खटियो.
7: गुजरल हफ्ते जे विनर जो नालो जानन लाए वाटिका शैम्पू जा सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो.
6: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
8: This program is brought to you by
9: Try All New Vatika Shampoo, nourishes hair naturally.
8: And
10: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And
11: Sarsab Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
12: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
13: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.

0: Capital Bank, easy wala bank.
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
1: स्पेशल तो लग रही है.
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: This program is brought to you by
5: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
4: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
7: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतलका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
10: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान.
9: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
12: हमने आप ना कुछ तीन बार मौत देखी.
13: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
14: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया.
11: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
15: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
11: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें. हुकूमत पाकिस्तान.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100.
16: Like us on facebook.com/FM247365.
17: FM247365.
18: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
19: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
18: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
20: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
21: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
18: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
20: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
21: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
20: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
18: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
21: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
18: आइए वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
4: This program is brought to you by
5: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
4: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
7: Sarsaps Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247. 365
10: 100 FM.
11: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
12: Ye paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: Pakistan on FM 100.
1: जी आपने ना सुनी जहे मुकद्दर और ये मेरी सबसे फेवरेट नात है और जितनी दफा भी आप उसको सुन लें आपका दिल नहीं भरता। आप लोगों के पैगामात मेरे पास हैं। इकबाल हुसैन साहब और सैयद उमैर अशरफ का भी मैसेज आया हुआ है। सैयद उमैर अशरफ कह रहे हैं कि सब दोस्त हमारे हैं सितारे, इट्स योर ओन आई विच सी ब्लैक एंड व्हाइट बेस्ड ऑन योर ओन कलर पैलेट्स बी वाइब्रेंट। राइट, तो अच्छे अच्छे मैसेजेस लोग कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा खुश इखलाक इंसान कौन है उनके सर्कल में। इकबाल हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम समिया जी, मेरे आसपास बहुत से खुश इखलाक लोग हैं। मेरा दोस्त तारिक मुगल फैक्ट्री में मेरा वर्कर बाबा नूर खान, आपका नाम भी मेरी लिस्ट में शामिल है और मेरा मानना है आपका इखलाक अच्छा हो तो लोग आपको इज्जत देते हैं। सबसे ऊपर जो जात है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके उसने सलूक की क्या ही बात है, जज़ाकअल्लाह। और वाकई में मुसलमान अगर खुश अखलाक ही होते दुनिया में सबसे ज्यादा तो यही बात। खैर अभी भी मुझे लगता है बाकी मजाहब के मुकाबले में हम हैं, लेकिन हमने अपनी कोई खास रेपुटेशन नहीं बनाई कि हम खुश अखलाक लोग हैं। और ये जरूरी है, ये जरूरी है कि हम कम से कम एक चीज लोगों से बेहतर हो सकते हैं जिसमें आपको डॉलर्स नहीं चाहिए, जिसमें आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, वो है खुश अखलाकी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह का एक तोहफा है खुश अखलाकी। मतलब अगर कोई इंसान ज्यादा खुश अखलाकी भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोशिश करके खुश अखलाक नहीं बन सकते, ये तो आपके अपने इख्तियार में होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच इकबाल हुसैन साहब, आपने मेरा नाम भी लिस्ट में शामिल कर दिया है, मेरे लिए ये बड़ी एक बाइस इज्जत बात है। और तो ये भी अल्लाह ताला का करम है, मेरे इतने अच्छे प्यारे लिसनर्स हैं। अच्छा जी, और तो आप लोग जिन्होंने हमें अभी सुनना शुरू किया है, आप लोग भी हमें मैसेज करें और बताएं कि आपके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा खुश इखलाक इंसान कौन है। हम आज बहुत ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गाया हुआ कलाम हम आपकी आपके लिए पेश करेंगे 12 रबी अव्वल की खुशी में। और आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार रहेगा आज समिया के फेसबुक पेज पे, आरजे समिया के इंस्टाग्राम पे @RJ समिया। और मैं लूंगी छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? 24 सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और 24 सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है, जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाए तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
8: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
10: वाजी का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर कोयटा तो जीती ने बीबी जोया गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइन्स ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते तेरा सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
11: This program is brought to you by
12: Try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
11: And
13: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
11: And
14: Sarsaps Nitro Foss ko laga aur jeeta ja.
11: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. 365.

मेरे खूबसूरत प्यारे लिसनर्स को मेरा प्यार भरा सलाम. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आरजे समीहा. आज हमारा मौजू गुफ्तगु है कि आपके इर्द गिर्द सबसे खुश इखलाक इंसान कौन है. आप लोगों के पैगामात हमारे साथ हैं, आइए चलते हैं आपके पैगामात को शामिल करते हैं. आबिद अमीर कह रहे हैं मौजू इर्द गिर्द के खुश इखलाक लोगों का चर्चा करना है. आज मेरे इर्द गिर्द समंदर ऐसे खुशबूदार लोगों का मेरी पसंद के एन मुताबिक लोग मयसर आए. मुझे मसलन उस वक्त जॉब पे बंदा बिल्कुल मेरे सामने, उसको मैं कितना कुछ कह देता हूँ लेकिन मुझसे मुंह नहीं बनाता, जब बात करो नॉर्मल अंदाज में बात करता है. मुझे ये बात बहुत पसंद है. अदनान नाम है उसका. हाँ जी, सारे लोग किसी को नहीं पसंद होते और खुश इखलाक लोगों की बाकी बेवकूफियों पर जो है ना वो इंसान जो है क्या कहते हैं नजरअंदाज कर देता है. सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान वो है मेरे ख्याल से आजकल के दौर में. वैसे और भी खुशकिस्मती की बातें हैं लेकिन एक बड़ी खुशकिस्मती ये है कि आपका बॉस अच्छा हो. अगर आपका बॉस अच्छा है, आप जिसको रिपोर्ट करते हैं वो अच्छा है, खुश इखलाक है, अंडरस्टैंडिंग है, यकीन करें लाइफ सेट है. और अगर आपका बॉस सड़ू है और आपको बस सड़े मिजाज का रहता है हर वक्त, आपसे छुट्टी मांगते हुए भी आप 10 दफा सोचते हैं, तो मैं तो कह रही हूँ वहीं से जगह से ना कहते हैं ना बंदा छोड़ दे जगह को, क्योंकि फिर एक टाइम आता है बंदा कहते हैं बस हो गया उसका एटीट्यूड. जो तारीफ ना करे, अप्रिशिएट ना करे. हाँ सही है, डिस्टेंस आई अंडरस्टैंड, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको एक फासला तो रखना चाहिए लेकिन कुछ ज्यादा फासले रखे करें. तुम मैं यहां हूं, तुम वहां हो और आज मैं यहां बैठा हूं, तो ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना वो फिर इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. एनीवेज, तो खैर ये हमारी बातें हैं, आप बताएं आपकी क्या बातें हैं, आपके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा खुश इखलाक इंसान कौन है. और तो हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा. अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये कलाम जो क्या कहते हैं ये अली जफर ने पेश किया है और ये एक मेराज के वाक्य का जिक्र है. बड़े खूबसूरत अंदाज से इन्होंने इस कलाम को परफॉर्म किया है. आइए सुनते हैं.

0: Good morning, Pakistan, with RJ Samiha.
1: जी आप सुन रहे थे बड़ा ही खूबसूरत कलाम और अली जफर की आवाज में, और मैं सोच रही थी कि कितने खूबसूरत वो लोग हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत शायरी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में. और ये मोहब्बत और ये जो फन है, ये अल्लाह का तोहफा है, हर एक को नहीं मिलता. एनीवेज वक्त हुआ एक ब्रेक का. आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे. एक और तीसरा तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एशआई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर. इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद.
2: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Valley.

0: 91.1 FM, your location for maximum music.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर क्विटा से जीती है बीबी जोया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: Like us on facebook.com/fm247365 FM 247365

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें. इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें.
6: اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM 24/7/365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 24/7/365

Assalamualaikum, Pakistan, and Assalamualaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? तो जी होंगी खूब सारी बातें, शेयर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ प्रोग्राम में होगा बहुत सारा म्यूजिक. तो चलें जी प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज करते हैं, फिर वापस आकर आपको तरीका कार भी बताते हैं और आज भी एक बहुत ही मजेदार से सवाल के साथ हम आपके खदमत में पेश हैं. तो चलें जी बगैर कोई और बात किए कर लेते हैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज, जो कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ.

ओके जी, तो ट्रैक के साथ वापस आ चुके हैं हम लोग और आज हमने आपसे ये पूछा है कि ट्रैफिक में फंस जाएं तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं। भाई ये वैसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, एक तो गुस्सा भी आ रहा होता है साथ ही साथ जो है वो आप अच्छा वैसे बहुत सारी चीजें करते हैं। आपको पता है हम कितनी भी देर के लिए ट्रैफिक में फंसे ना, लेकिन हम लोग क्या बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। अच्छा भाई आप लोग क्या करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं या फिर अपना फोन यूज करते हैं या किसी से बात कर लेते हैं? अक्सर औकात जब आपके पास टाइम नहीं होता ना तो फिर आप कहते हैं यार ऐसा करता हूँ ट्रैफिक में तो फंसा हुआ हूँ, चलो फोन करके किसी से बात कर लेते हैं या फिर बस ट्रैफिक खत्म होने का इंतजार करते हैं। इसका जवाब हमें जरूर दें, प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल आप लोग सुन रहे हैं आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दें या फिर 3636 पर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें कि ट्रैफिक में फंसने के बाद आप अपने टाइम को किस तरह पास करते हैं। अच्छा मुझे लगता है एक और बड़ी कॉमन चीज़ है जो कि शायद मैंने इसमें ऐड नहीं की है, वो ये है कि जी जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं ना तो हम अपने इर्द गिर्द की गाड़ियां या इर्द गिर्द में बैठे हुए लोगों पर भी जरूर गौर करते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा ये गाड़ी है, अच्छा यार इसका तो एसी बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसका भी अंदाजा हो जाता है जब जो शीशे हैं वो जब मॉइस्चराइज हो जाते हैं तो उससे अंदाजा हो जाता है कि यार इसका एसी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा इसके पास ये गाड़ी है, अच्छा ये गाड़ी का कलर बहुत अच्छा है। तो टाइम पास करने के लिए हम बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जब ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं अल्लाह मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है भाई, सच्ची बात है मुझे तो उस वक्त गुस्सा और बेजारी आ रही होती है और मैं सबसे पहले देख रही होती हूँ कि क्या कहीं कोई रास्ता ऐसा मौजूद है जिससे हम निकल जाएं और तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। पहले कराची की सड़कें, उसके बाद ये अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक जाम, अल्लाह। तो भाई जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह अपने टाइम को करते हैं?

0: ओके सो ट्रैक के साथ वापस आ चुके हैं हम। और भाई बात ये हो रही थी कि जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप अपने टाइम को पास करने के लिए क्या करते हैं, किस तरीके कार के जरिए जो है वो आपका वक्त गुजरता है। और भाई फराज हाशमी का मैसेज आ चुका है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑल राइट, और उन्होंने बताया कि मैं सॉन्ग सुनता हूँ एक ऐप पे। ओके दैट्स ग्रेट भाई, वक्त तो गुजारना है, और अगर आपके पसंद का म्यूजिक हो तो मुझे लगता है कि कोई भी काम या कोई भी टाइम ना थोड़ा और तेज से गुजर जाता है, बिकॉज आप उसे बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये है कि सफर में म्यूजिक में बड़ा मजा आता है, और अगर आपके पसंद के गाने हो, कभी आपका लाइट म्यूजिक सुनने का दिल चाहता है, कभी आपका दिल चाहता है कि भाई तेज तेज गाने जो है वो चलाए जाए। अच्छा लेकिन मुझे लगता है कि जब गाड़ी चल रही हो ना तब म्यूजिक सुनने में ज्यादा मजा आता है, जब गाड़ी खड़ी है ना तो तब इतना ज्यादा मजा नहीं आता। लेकिन भाई ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है बिल्कुल, क्योंकि हमने आज ये सवाल आपसे पूछा है कि आप बताएं कि जी जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं। तो इसमें से जो भी आपका जवाब है ऑब्वियसली वही सही जवाब है, क्योंकि ये आपकी अपनी राय है, और ऐसी हम आपकी राय ले रहे हैं। तो आप हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप मैसेज करके बता सकते हैं कि जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप अपने वक्त को किस तरह गुजारते हैं, तो टाइम पास करने के लिए आप क्या कुछ करते हैं, सोचे सोचे और हमें जरूर बताएं। ब्रेक की जानिब चलते हैं और ट्रैक के साथ वापस भी आते हैं।
1: वाटिका हफ्ते मां लकी ड्रॉ विनर क्वेटा मां गोल्ड क्वाइन खटिया है बीबी जोया आने तवा बे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ए बेशुमार इनाम खटे सको था। बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करियो ए ढेर सारा इनाम खटियो। गुजरल हफ्ते जे विनर जो नालो जानन लाए वाटिका शैम्पू जा सोशल मीडिया पेजेस विजिट करियो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

Okay, so again we are back with the track. और भाई जवाबात हमारे पास आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय हम जान रहे हैं बिल्कुल भाई, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और कराची के ट्रैफिक में फंसना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और आज का सवाल हमारा यही है कि जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप अपने टाइम को पास करने के लिए क्या करते हैं? सॉन्ग सुनते हैं, फोन चलाते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं, या बस सामने वाली गाड़ी को देखते रहते हैं? अल्लाह, वैसे ये भी बड़ी बेबसी होती है कि बस आप सामने वाली गाड़ी को देख रहे हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि ये हिले जुले तो कुछ हमारी जिंदगी में भी तब्दीली आए। अच्छा भाई, फराज हाशमी ने अपनी राय हमसे शेयर की कि वो भाई म्यूजिक सुनते हैं और इसी के साथ साथ लोग भी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहती है सिर्फ ट्रैफिक खुलने का वेट करती हूँ। अये हाय, बिल्कुल मैं भी वैसे ये करी होती हूँ, मैं कहती हूँ एज सून एज पॉसिबल बस ऐसा हो कि ट्रैफिक जो है वो खुल जाए। कहती है क्योंकि मैं मोबाइल लेकर नहीं जाती बाहर, अगर कभी गलती से ले जाऊं तो मोबाइल बाहर नहीं निकाल सकते। अये हाय, ये है भाई कराची की वाइब्स कि एक डर लगा रहता है, तो ये बात भी सही है। और नहीं आप लेके जाते तो आपको उसकी याद भी आ रही होती है, और जब आप लेकर जाते तो आपको उसकी टेंशन भी हो रही होती है। ठीक है जी, कहती है मैं बस ट्रैफिक खत्म होने का वेट करती हूं और दुआ करती हूं कि जल्दी से क्लियर हो जाए, क्योंकि पेट्रोल की स्मेल से मुझे वॉमिट होने लगती है। ओ माय गॉड, रियली? अच्छा वैसे ये होता है, अच्छा बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ मसला होता है, जैसे कि इनको पेट्रोल की स्मेल से होता है, बहुत ज्यादा सफोकेशन से भी वॉमिटिंग होने लगती है। इट डिपेंड्स कि क्या सूरत हाल है। या तो भाई आप एसी चला के गाड़ी में बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन वो भी ना थोड़ी देर बाद आप बड़े पिस्ड ऑफ हो जाते हैं और आपका दिल चाह रहा होता है कि नहीं भाई अब जो है वो शीशे खोल देने चाहिए गाड़ी के, काफी देर से ऐसी तरह बैठे हुए हैं। तो ये है कि बहुत सारे लोगों के ना अलग अलग मसले मसाइल भी होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बैठना मुश्किल भी लगता है। तो देखो तो जरा, हम एक ट्रैफिक में कितनी सारी चीजों को सॉर्ट भी कर लेते हैं, बोर भी हो जाते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस भी हो जाते हैं हमारे जो है वो इस फंसे हुए ट्रैफिक में। तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आ गया हमारे प्रोग्राम में। सबकी राय सबकी जुबानी हम सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे जी, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, और इस वक्त कराची का दर्जा हरारत भी आपको बताएंगे। भाई गर्मी हो गई है कराची में, थोड़ी थोड़ी गर्मी की वापसी हो गई है, लेकिन अलबत्ता फिर भी खुदा ताला का बहुत शुक्र है कि रात और शाम के औकात में मौसम बेहतर हो जाता है। इस वक्त कराची का टेम्परेचर 32 है जबकि रियल फील्स लाइक इज 34, लेकिन थोड़ा सा जो फील है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बादलों का अभी भी वैसे आना जाना है लेकिन तादाद में कमी हो चुकी है और धूप अब महसूस हो रही है, तो इस वजह से वी फील सो हॉट। लेकिन अभी अगस्त का महीना बहुत अच्छा साबित हुआ है भाई हम कराची वालों के लिए, क्योंकि इतना खूबसूरत और अबर आलूद मौसम यकीन नहीं दिला रहा था कि हम शहर कराची से ही वाबस्ता हैं। तो ठीक है जी, इतने टाइम से अच्छा मौसम एक्सपीरियंस करे थे तो थोड़ा ऐसा ही सही। अच्छा भाई, ट्रैक की जानिब चलते हैं हसन जहांगीर के, और मुझे याद आ गया कि फराज हाशमी ने हमसे दो चार दिन पहले इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी, तो आप इसे एंजॉय करें। इसके बाद आते हैं वापस।

0: ओके तो भाई हसन जहांगीर की आवाज भी आपने शामिल कर ली है, हमने शामिल कर ली है और आप लोगों ने सुन ली है भाई। और मुझे याद था कि भाई हमसे रिक्वेस्ट की थी फराज हाशमी ने और उसके बाद से वो हमारे शो में कनेक्ट नहीं हुए तो इसलिए हमने शामिल नहीं किया। एंड देन अच्छा भाई लुकपल कहती हैं कि मैं सिर्फ हाँ ओके ऑल राइट। उसके बाद कहती हैं कि आज उनके लंच में जो है वो है लौकी कीमा, जबरदस्त भाई लौकी इज वेरी गुड। लौकी के बहुत सारे फवायद भी हैं और इनके लंच में भी है। इसी के साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं ऑफिस से सुन रहे हैं, दिन इनका अच्छा गुजर रहा है। कहते हैं लंच में भिंडी है, आपका 2 डेज लंच हो चुका है। बिल्कुल मेरे कल के लंच में था आलू मेथी और कल मैंने बहुत टाइम बाद, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ सदियों बाद आलू मेथी खाई थी, तो कल मेरे लंच में आलू मेथी थी और आज के लंच में मोस्ट प्रोबेबली वैसे मुझे पता नहीं है कि आज मेरे लंच में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई सब्जी ही आज मेरे लंच का हिस्सा बनने वाली है। सो फॉर दैट आई हैव टू वेट। ऑल राइट, उसके साथ कहते हैं कि ट्रैफिक में फंसने के बाद गुस्सा आता है ये बात तो है, गुस्सा तो आता है। कहते हैं गुस्सा आता है, कोशिश होती है कि जल्दी ट्रैफिक खुल जाए तो अच्छा लगेगा। और कहते हैं लेट होने की वजह से फोन पर बता देते हैं, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा। रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। तो रशीद खान ने बिल्कुल साफ साफ जवाब दिया है कि भाई ट्रैफिक में फंसने के बाद ये म्यूजिक सुनना, लोगों से बात करना या फिर वक्त गुजरने का नहीं, बस सिर्फ गुस्सा आता है डायरेक्टली। ये वैसे एक एक्चुअल बात है कि गुस्सा तो आता है जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं अल्लाह, और आप सिर्फ उस वक्त का इंतजार करते हैं कि कब ये रोड क्लियर होगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली में गुस्सा आता है, ये बात ठीक है वैसे लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी राय है, आप जरूर शेयर करें। हमने आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं कि जब ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, फोन यूज करते हैं, किसी से बात करते हैं या फिर बस ट्रैफिक खत्म होने का इंतजार करते हैं। इसके लिए आप हमें 3636 पर जरूर मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप कॉमेंट कर सकते हैं, वहां पर हमने स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। चलते हैं ब्रेक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारते इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: 100 FM।
5: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है
4: जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। राब्तों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या 6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें। ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है। अकाउंट तेजी से फाल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो। कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है। जाली लिंक्स और ऑफर से बचें। मुफ्त इंटरनेट, इनाम, सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें। सेटिंग्स, लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
7: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
8: FM 24/7/365

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: जी दोस्तों, तो आ गए हैं हम वापस और आप लोगों से हमारा गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। हमारा आज का सवाल आप लोगों से ये है कि जी जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो अपने टाइम को पास करने के लिए आप क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, बोर हो जाते हैं या फिर बस ट्रैफिक के चलने का इंतजार करते हैं? ये हमारा आपसे आज का सवाल है, जिसका जवाब देने के लिए आप हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। अच्छा भाई, दो तीन दिनों से कोई इंटरेस्टिंग दिन नहीं बनाए जा रहे हैं जिस पर हम गुफ्तगू करें, आप लोगों से शेयर करें। सो आजकल वेरी बोरिंग डेज बनाए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा खास दिन नहीं है कि जिसका जिक्र किया जाए और आप लोगों को उसके हवाले से आगाही फराहम की जाए। आज तो बस एक बनाना स्प्लिट डे मनाया जाता है, जो कि एक बनाना रखते हैं, उसमें तीन अलग अलग तरह की आइसक्रीम्स होती हैं और डेकोर करके जो है उसे प्रेजेंट किया जाता है। तो आज इसका दिन मनाया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो इट्स दिस मच स्पेशल, और वैसे भी अभी तो थोड़े थोड़े गले सबके खराब चल ही रहे हैं, सो अवॉइड करें, क्योंकि अभी इस वक्त कराची का मौसम जरा सा चेंज भी हुआ है, थोड़ा ड्राई भी हो रहा है, और इस दौरान जो है वो आप अपना ख्याल रखें, मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज से मैंने भी रियलाइज किया है कि मॉइस्चराइजर मुझे लगाना चाहिए, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि आपको पता है हमें ना पूरे 12 महीने मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं अपनी स्किन केयर के लिए कि बस सिर्फ सर्दियों में जब ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है तब हम मॉइस्चराइजर लगा रहे होते हैं, बट नहीं, हर एक की स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपको मॉइस्चराइजर मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन उसे लगाने से आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो मॉइस्चराइजर इज नॉट ओनली फॉर विंटर्स, ये आम दिनों के लिए भी है, आम सीजन के लिए भी है, सर्दी गर्मी खजा बहार हर मौसम में आपको लगाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल हमने आपसे पूछा है, आपकी राय का इंतजार करेंगे, और सिर्फ यही नहीं और भी खूब सारी बातें आपसे करेंगे। एक और ट्रैक की जानिब चलते हैं। आपके लंच में क्या है जरा नजर डालने, क्योंकि कुछ देर बाद हम आपसे ये भी जानेंगे। ट्रैक शामिल करते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
0: 0311117837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: You're in tune with the lunchtime special on the big one.
5: FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Jail. This is FM 100.
6: This is the lunchtime special, only on FM 100.
7: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.
9: Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. This is me Fatima Khan and I'm back again. Main aa chuki hoon wapas aur aap logon ke sath hamara guftgu ka silsila jari hai. To bhai baatcheet ka silsila yun jari hai ki humne aapse ye jana ki bhai jab aap traffic mein phans jate hain to kis tarah aap apne waqt ko guzarte hain, yani ki aap time pass karne ke liye kya karte hain, jis tarah aapka waqt jo hai wo tezi se guzar jata hai. To bhai music sunte hain, kisi se phone par baat karte hain, apne phone ko istemal karte hain, ya bas aise hi boring reh kar traffic ke aage badh jane ka intezar karte hain. तो आप क्या करते हैं ये हमें जरूर बताएं. ये हमारा आज का सवाल है जिसका जवाब देने के लिए आप हमें 3636 पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर. तो भाई प्रोग्राम की सेकंड हाफ की रिवायत ये है कि एक अदर ट्रैक डेडिकेट किया जाता है तमाम सुनने वालों के नाम. तो सबसे पहले एक अदर ट्रैक आपके नाम और फिर बढ़ाएंगे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे. तो लंच में क्या है जरा गौर कर लें क्योंकि नेक्स्ट सवाल हमारा यही है.

मुनफरिद सा बड़ा मजेदार सा। अच्छा भाई, थोड़ा सीजन चेंज हुआ है ऑब्वियसली, तो अगस्त में बहुत सारे नए फल और सब्जियां आती हैं और इस वक्त कराची में सब्जियां बहुत महंगी भी चल रही हैं। ताजा तरीन सूरत हाल ये भी है, इस दफा खीरे और टमाटर जो हैं वो आपस में रेस लगाए हुए हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और स्पेशली जो चाइनीज सब्जी है वो इस टाइम में बहुत अच्छी आती है, इस टाइम से लेकर अभी विंटर्स तक ये बहुत ही फ्रेश और जबरदस्त आती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि अभी जो लाल वाली गाजर है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। और गाजर तो मैं यही कहती हूँ कि अगर गाजर खानी है तो वही वाली खाई जाए जो कि एक्चुअली में दो एक्चुअल गाजर है, ये जो एक इसे क्या कहते हैं, इसे आई थिंक चाइना की गाजर कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऑरेंज कलर की होती है, बट दैट इज नॉट सो टेस्टी। बट भाई ये वाली जो है वो बहुत अच्छी होती है जो कि अब नजर आना शुरू हो गई है। तो अगस्त के करंट सीजन में अगर बात की जाए कि इसका कौन कौन से जो फल और सब्जियां मौजूद हैं और उनमें क्या क्या फायदे हैं, तो आम के बारे में अगर बात की जाए, आम बस ऐसा ही है कि अब बस किसी भी पल गायब हो जाएंगे। अभी वैसे बहुत बड़ी तादाद में तो मौजूद नहीं है, लेकिन चंद आठ ठेलों पर आपको नजर आ सकते हैं आम। आम की अगर बात की जाए तो आम में वाइटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, नेचुरल स्वीटनेस की वजह से एनर्जी का अच्छा सोर्स है। पाकिस्तान में अगस्त तक कुछ मैंगोज की वैरायटी अवेलेबल होती है, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी अख्ताम पजीर जो है वो होने जा रहे हैं। तरबूज जो है वो हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तरबूज इस वक्त हमें ना नजर आ नहीं रहा है। अब बात करते हैं खीरे की, जो कि आजकल आसमान पर जिसकी कीमतें चल रही हैं, तो पानी और फाइबर प्रोवाइड करता है, सैलेड के लिए परफेक्ट है, समर वेजिटेबल है। और वाकई में ये तो हकीकत है कि खीरे के बहुत सारे फवायद मौजूद हैं, तो उसको आप अपनी डाइट में जरूर ऐड किया करें। इसी के साथ साथ भिंडी यानी कि लेडी फिंगर फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। अगस्त में भिंडी का सीजनल अवेलेबिलिटी होती है और जो लोग भिंडी शौक से खाते हैं, वैसे हमारी नेशनल वेजिटेबल भी है, तो अभी वाकई में भिंडी बहुत अच्छी जो है ना वो आपको फ्रेश मिल रही है, क्योंकि इसका टाइम है। करेला भी जो है वो बहुत फायदेमंद है, इसमें भी फाइबर है और समर वेजिटेबल में कॉमनली ग्रो करता है और लोगों को बहुत पसंद भी आता है। मुझे नहीं अच्छे लगते करेले, लेकिन लोगों को अच्छे लगते हैं। और भाई इसी के साथ साथ टमाटर में विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है, जो कि सैलेड चटनी और कुकिंग में इजीली इंक्लूडेड होता है, जो कि बहुत मजे का लगता है। अच्छा भाई, आम तो अब जाने ही वाले हैं, लेकिन आम को जब आम आते हैं ना तो लोग भरपूर तरीके से आमों को एंजॉय करते हैं। लेकिन भाई ये तो हो गई सब्जी और फलों की बातें, लेकिन इसी के साथ साथ यहीं पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि आपके लंच में क्या मौजूद है ये हम आप ही की जबानी सुनेंगे। तो हमें जरूर बताएं कि आपके लंच में इस वक्त क्या मौजूद है। जब तक आप हमें बता रहे हैं तो भाई हम उस ट्रैक की जानेब चलते हैं और फिर वापस आकर जानते हैं कि आपके लंच में क्या है। 3636 से मैसेज करें या आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बताएं।

के जी तो लुकपल कहती हैं कि जी वो मैं थी जिसने रिक्वेस्ट की थी, इसका म्यूजिक बहुत प्यारा है। ऑल राइट, जैसे लुकपल ना हमारी दोनों जानब पे होती हैं, एक जानब 3636 पे मैसेज करी होती हैं, साथ ही साथ जो है वो हमारी फेसबुक पेज पर भी एक्टिव रहती हैं, तो दोनों जानब जो है वो लुकपल एक्टिव रहती हैं। दैट इज सो नाइस। अच्छा भाई, आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो अपने वक्त को किस तरह गुजारते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, और वो जरूरी चीजें हैं ट्रैफिक के कवानीन जिसे हम फॉलो नहीं करते। अगर गौर किया जाए या देखा जाए तो अक्सर औकात ट्रैफिक में फंसने की अहम वजह कहीं ना कहीं हम खुद ही होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि कभी कभी आपको इतना गुस्सा आता है कि आप बहुत देर तक फंसे रहते हैं, और जब आप आगे जाकर देखते हैं तो ये होता है कि किसी ने जल्दी जाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को आगे लिया है, रॉन्ग टर्न ले लिया, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। और देखिए, इस सूरत हाल में ये भी होता है कि कुछ लोगों को कहीं इमरजेंसी जाना होता है, किसी की तबीयत का इशू हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि हमें रियलाइज करनी चाहिए। हमें लग रहा होता है कि जी जब रोड पर हम मौजूद है ना तो सिर्फ मैं ही मैं हूं बल्कि कोई और नहीं है, तो ये वाली जो एक थिंकिंग है ना ये बहुत गलत है। अगर हम ट्रैफिक के कवानीन को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे या खुद रॉन्ग आना नहीं छोड़ेंगे तो जी मसले मसाइल ना कभी खत्म नहीं होंगे, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि जी आपने जो है ना वो ट्रैफिक में फंसने के लिए एक सर्वाइवल किट बनानी पड़ेगी, जिसमें आप पॉपकॉर्न रख सकते हैं, चार्जर रख सकते हैं, कुछ स्नैक्स रख सकते हैं, अपने लिए एक अच्छा म्यूजिक प्लेयर भी एड कर सकते हैं जिसमें आप अपनी पसंद के ट्रैक्स को एड कर सकते हैं, तो फिर तो हमें एक सर्वाइवल किट ही लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन लेकिन लेकिन अगर हम थोड़ा एहतियात करें, ख्याल करें रोड पर कि जी हमारे साथ साथ और भी कई लोग रोड पर मौजूद हैं, तो ये वाले जो मसले हैं ना इसका हम शिकार बहुत कम होंगे। लेकिन अभी की करंट सिचुएशन को अगर मद्देनजर रखते हुए मैं गुफ्तगू करूं तो कराची के हर मुकाम पर थोड़ा सा आगे जाकर आपको ये मसले का शिकार आप हो जाते हैं, जिसमें मोस्टली गलती जो है ना वो लोगों की होती है, एक तो रॉन्ग आने की वजह से, एक तो जल्दबाजी में खुद पहले जाना है तो भाई अपनी गाड़ी जो है लोग जो है वो आगे कर देते हैं, पता भी है कि जी खुद भी फंसेंगे और इनके साथ कई लोग भी फंसेंगे, लेकिन इस चीज का इंतजार हम नहीं करते हैं। तो आज हमें खुद भी कुछ सीखना चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा एहतियात करें, ट्रैफिक में ना फंसें, ना खुद फंसें, ना किसी को फंसने दें। तो ये भी एक जरूरी टिप है, मैंने कहा क्योंकि मौजू है तो चलो जी इसी पर और भी मजीद बात करते हैं। अच्छा जी, ट्रैफिक जाम सिर्फ रोड का मसला नहीं होता बल्कि स्ट्रेस और मूड को भी इफेक्ट कर सकता है। लंबी ड्राइविंग में फ्रस्ट्रेशन नेचुरली इंक्रीज हो सकती है। म्यूजिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है, लेकिन बहुत लाउड या बहुत फास्ट म्यूजिक डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा तेज म्यूजिक सुनते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके कानों में आपकी म्यूजिक की आवाज चले तो इससे भी मसले हो सकते हैं, बिकॉज बाहर की सिचुएशन है उसके बारे में आपको पता नहीं चलता। तो म्यूजिक बिल्कुल सुने, लेकिन ऐसी आवाज रखें कि बाहर की सिचुएशन के हवाले से भी आपको हाव न हो कि बाहर क्या चल रहा है। ट्रैफिक में जब हम बार बार सिग्नल्स और गाड़ियों की मूवमेंट देखते हैं तो टाइम एक्चुअली स्लो फील होता है, इसलिए 10 मिनट का वेट भी कभी कभी 30 मिनट जैसा लगता है, और ये तो होता है वाकई में। आपको ऐसा लग रहा होता है कि सब चल रहे हैं, हम ही रुके हुए हैं, पता नहीं वक्त कब गुजरेगा, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत कम टाइम होता है, लेकिन हम उसे फील इस तरह कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ट्रैफिक में लोग अक्सर अपनी फेवरेट एक्टिविटी निकाल लेते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन लेते हैं, कोई कॉल कर लेता है, कोई सिंगिंग करता है, और कोई बस इंतजार करता है कि आगे कब जाना है। और उसी के साथ साथ ना बहुत सारे लोग ये भी देख रहे होते हैं कि इसकी गाड़ी में क्या है, उसकी गाड़ी में क्या है, कौन कैसे बैठा है, कौन क्या सुन रहा है, बहुत सारी चीजें ना आपके जहन में चल रही होती है। तो ये है कि एक ट्रैफिक में फंसने से ना हमारा माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाता है और मजीद बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक में सबसे ज्यादा पेशेंस किसका टेस्ट होता है, ड्राइवर का या पैसेंजर का या हॉर्न बजाने वाले का? वैसे ये एक्चुअली में सवाल होना चाहिए, ट्रैफिक में तो हम फंसते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो टेंशन वाली बात होती है ना वो मुझे तो लगता है कि ड्राइवर के लिए होता है, क्योंकि जो पैसेंजर बैठा है वो तो सुकून से बैठा है, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है ना उसे ये भी देखना है कि अब आगे बढ़ना है, अब वेट करना है, शॉर्टकट भी ढूंढना है, तो ये है कि गाड़ी वाले का मुझे लगता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। तो बैठने वाले पैसेंजर से दरख्वास्त है कि उसे मजीद परेशान ना करें, ट्रैफिक है तो है, कोई दीगर एक्टिविटी ढूंढ लें। और इसी के साथ साथ मैं भी सोच रही हूं कि हम भी एक अदर ट्रैक की जानिब चलते हैं और एक अच्छा सा म्यूजिक सुनते भी हैं और आपको सुनाते हैं, और इसके बाद हम आते हैं वापस। तो किस ट्रैक को शामिल किया जाए, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो आते हैं हम वापस ट्रैक के बाद।

ओके जी, सुट्रैक के बाद आ गए हैं वापस। और भाई आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जरूर बताएं। भाई लुकपल ने बता दिया है, रशीद खान ने बता दिया है और गुमनाम मैसेजेस भी हमारे पास आ चुके हैं। मुझे लगता है ये मैं जिन गुमनाम का जिक्र करती हूँ ना, उन्हें मजा आता है और वो कहते हैं कि ऐसे ही सही, ऐसे ही खुश हैं, तो हम भी ऐसे ही खुश हैं। ऑल राइट जी, तो ये बताते हैं कि जी मेरे लंच में पालक गोश्त है और साथ में रोटी। आई रियली लाइक पालक गोश्त। मुझे लगता है पालक से बनी हर चीज बड़ी मजे की लगती है। अब वो आलू पालक है या फिर वो एनीथिंग, आलू पालक, पालक गोश्त, पालक चिकन, सब मजे का लगता है। और भाई हमारे पास मैसेज आया है फिजा का। फिजा कहती है आपकी लंच में तहरी है, इट्स कॉल्ड तहरी और एल्स। वैसे तहरी ही कहा जाता है लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो है तहरी और हम लोग बोलते हैं तहरी। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो रशीद खान की भी लंच में बनती है ना, तो वो हमें बता देते हैं कि तोरई, जैसे कि तुरई, हम तुरई बोलते हैं, बट द आई थिंक द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ तोरई इज तोरी। हमारे घर में तोरी बनी है, लोग ये कहते हैं। तो रशीद खान के लंच में जब भी बनता है ना, तो वो हमें दोनों चीजें लिख देते हैं कि जी तुरई बनी है और मैं भी भूल गई, तुरई बनी है और तोरी, ये दोनों चीजें लिख के हमें बता रहे होते हैं। ऑल राइट जी, तो मजे मजे के लंचेज इस वक्त सब लोग कर रहे हैं। कुछ लोग अपने काम में बहुत ज्यादा मगन है और इतना ज्यादा मगन है कि उन्होंने अभी तक लंच के बारे में सोचा नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा है कि पहले लंच करते हैं उसके बाद वी आर बैक टू द वर्क। तो आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, अपने लंच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या काम इतना है कि भाई लंच के बारे में भी सोच भी नहीं रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी से अपने काम को एक साइड पर करें और उसके बाद जाकर अपना लंच करें। तो भाई लंच जरूर करें, एंजॉय करें और हमें जरूर बताएं कि आपके लंच में क्या मौजूद है। हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार, आते हैं वापस ट्रैक के साथ। तो लंच क्या है जरूर हमसे शेयर करें 3636 पे या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे।

ओके सो आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का भी वक्त जो है वो अख्ताम पजीर हो चुका है। तो भाई आज हमने आपसे ये जाना कि जी जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप अपने वक्त को किस तरह पास करते हैं, यानी कि टाइम पास के लिए आप क्या कुछ करते हैं। तो लोगों ने भाई मुख्तलिफ चीजें बताई, बल्कि कुछ मैसेजेस रहते हैं तो चलें जी उन्हें भी रैपिडली शामिल कर लेते हैं। हमें अनस मैसेज करते हैं, अनस कहते हैं कि आप ही जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो बस दुआ करते हैं कि आगे जाएं। बिल्कुल ठीक है अनस। के साथ साथ हमें जो है वो याया भी मैसेज करते हैं, कहते हैं जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो गुस्सा भी आता है और बस दिल चाहता है कि उड़ के चले जाएं। अरे हाय काश ही पावर हमारे पास होती कि हम उड़ सकते, लेकिन वाकई में उस वक्त इंतजार के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमें फिजा अब मैसेज करके बताती हैं, कहती हैं आप ही जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो बस बर्दाश्त के सिवा और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता। ये तो है ऑप्शन नहीं होता, लेकिन भाई टाइम पास करने के लिए हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। और हमें मैसेज करती है आसिया कहती हैं कि आप ही ट्रैफिक में फंसना मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा वक्त गुजर जाता है। हाय हाय वेरी नाइस, कुछ बहुत ही डिफरेंट चीज मुझे पता चली है। किसी ने कहा है कि उन्हें ट्रैफिक में फंसना अच्छा लगता है। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं। तो ये हमारे पास वाहिद एंड वन एंड द ओनली मैसेज आया जिन्होंने कहा है कि उन्हें ट्रैफिक में फंसना अच्छा लगता है। खैर जी वी हैड अ ग्रेट टाइम विद यू एज ऑलवेज। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें हमेशा। इंशाल्लाह आपसे होगी मेरी मुलाकात कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम एक नए मौजू के साथ। अंटिल एंड अनलेस टेक केयर। लुकपोर्ट भी कहती है टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
1: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: This program is brought to you by
2: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: कुदरत का निजाम तवाज़न पर कायम है।
4: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
3: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
5: हमारी जिम्मेदारी है।
6: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
9: इट्स 24 आवर्स नॉनस्टॉप वाइब्रेशन कनेक्टिंग यू
10: कनेक्टिंग
9: होल्डिंग यू
10: होल्डिंग
9: विद FM 100
11: FM 100 FM 100

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
4: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
5: Hamare maashre mein jinsi badsulooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote, balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhein, dono ko samjhaye, chahe apna ho ya paraya. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
9: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।

0: 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
4: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
1: 100 FM.

जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: 100 FM.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: 100 FM।
3: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे।

लंच टाइम अपने कॉलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
6: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाए। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
2: हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
7: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो। अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 100 FM।
5: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता। लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या PTA CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या PTA की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
7: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
8: facebook.com/fm247365 fm247365

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: facebook.com/fm247365
1: fm247365 अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
2: हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: facebook.com/fm247365 fm247365

0: your location for maximum music.
1: FM 100's time check. It's 5 p.m.
2: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
3: अहमद, हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
8: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
9: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
8: मतलब?
9: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
8: स्पेशल तो लग रही है।
9: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
8: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब?
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the JazzCash app now.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: This program is brought to you by
4: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
3: And
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
6: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko hargiz istemal na karne dein. और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
8: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
9: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 100 FM।
5: छम छम छम, किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आ

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
1: स्पेशल तो लग रही है.
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: बैंक, इजी वाला बैंक।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
2: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: This program is brought to you by
6: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
5: And
7: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: And
8: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
9: ख्वाब तो सब देखते हैं, बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
10: सामने अपने आप को से 3 बार मौत देखा।
11: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
12: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
9: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
13: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
9: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सत्यभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का कयाम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज़ कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
15: us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
6: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
5: मतलब?
6: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
5: Special तो लग रही है।
6: और price सिर्फ 64,49,000.
5: अब समझ आया, इसे special edition क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
7: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
5: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
6: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
5: मतलब?
6: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
5: स्पेशल तो लग रही है।
6: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
5: अब समझ आया, इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं? एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
8: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
9: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
10: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
11: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली
0: एंड
12: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
13: सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा।
14: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों के इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
15: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
16: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
17: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
18: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
19: हमारी जिम्मेदारी है।
20: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
15: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 लाइक अस।
19: us on facebook.com/FM247365.
21: FM247365. FM100.
22: 31 साल FM100. आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
21: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रूपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
8: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
9: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
10: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
9: मतलब?
10: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
9: स्पेशल तो लग रही है।
10: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
9: अब समझ आया, इसे स्पेशल एडिशन क्यों

0: कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
1: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जस्ट कैश है ना?
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: 100 FM।
5: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अमीन कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 03111117837.
5: अपनी कमाई से अपने घर की groceries लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
6: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
7: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं.
6: मतलब?
7: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
6: स्पेशल तो लग रही है.
7: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
6: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: Capital Bank, easy wala bank.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
3: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाए तो लाइन में क्यों लगना? अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जस्ट कैश है ना?
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रूपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना?

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
7: Simat rahe hain sitare falak ki baahon mein. Gubar-e-noor hai phaila hua nigahon mein. Ye kis rasool ki aamad hai bazm-e-hasti mein. सहर अजल से मुअद्दब खड़ी
8: हैरान।
2: FM 100 पाकिस्तान की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: 100 FM।
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
5: 100 FM।
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
8: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
10: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली

0: बैंक इजी वाला बैंक।
1: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।

0: Travel Bank, easy wala bank.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے. لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
9: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
10: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں. یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں.
11: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
5: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
6: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
5: मतलब?
6: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
5: Special to lag rahi hai.
6: Aur price sirf 64,49,000.
5: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
7: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
8: 100 FM।
9: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
8: FM 247 365 FM 100।
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
10: सिमट रहे हैं सितारे फलक की बाहों में, गुबारे नूर है फैला हुआ निगाहों में। ये किस रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में, सहर अजल से मुअद्दब खड़ी है राहों में।
0: FM 100 पाकिस्तान की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियाँ छीन लेती है।

0: से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
3: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se. हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
2: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
5: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 24/7 365।
0: जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, लाखों सलाम।
8: ये किसकी शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किसकी शहंशाह वाला की आमद आमद है।
0: FM 100 पाकिस्तान की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM।
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
6: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों के इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے۔
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
13: Let's celebrate
14: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
15: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔
7: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365।
7: सिमट रहे हैं सितारे फलक की बाहों में, गुबारे नूर है फैला हुआ निगाहों में, ये किस रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में, सहर अज़ल से मुअद्दब खड़ी है राहों में।
4: FM 100 पाकिस्तान की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

0: तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना। हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: 100 FM।
0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: वीकली लकी ड्रॉ विनर क्विटर से जीती है बीबी जोया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: 100 FM।
6: चम चम चम किताबें लेके निकले हम, अमीन कहाना रुकना तुम, रोज रोज आगे।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
6: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखी से मुतल्लिक کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
4: सिमट रहे हैं सितारे फलक की बाहों में, गुबारे नूर है फैला हुआ निगाहों में। ये किस रसूल की आमद है बज़्मे हस्ती में, सहर अजल से मुअद्दब खड़ी है राहों में।
0: FM 100 पाकिस्तान की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक।

0: FM 100 पाकिस्तान की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक।
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
0: 100 FM
1: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
2: वाटिका हफ्ते मां लकी ड्रॉ विनर क्वेटा मां गोल्ड क्वाइन खटिया है बीबी जोया
3: आने तवा बे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ऐ बेशुमार इनाम खटे संगो था। बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करियो ऐ ढेर सारा इनाम खटियो।
2: गुजरल हफ्ते जी विनर जो नालो जानन लाए वाटिका शैम्पू जा सोशल मीडिया पेजेस विजिट।

0: पेजेस विजिट करो. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नर्शेस हेयर नेचुरली.
1: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
2: FM247365.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो और मरहबा या मुस्तफा खूबसूरत जश्न आमद रसूल आपने सुना और उम्मीद करता हूं 100% आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अब सिलसिला एगार हजरत अब्दुल मुतलिब से जो है हम थोड़ा सा किस्से को आगे लेके चलते हैं। अगर वाकयात के हवाले से देखा जाए तो बेतहाशा वाकयात हैं और वक्त हमारे पास इतना मौजूद है नहीं। हम लोगों ने आज के इस प्रोग्राम में इस बात को आपकी विलादत तक और थोड़ा सा आगे तक लेकर चलना है, लेकिन अगर बिलाल भाई आपकी इजाजत हो तो चंद मैसेजेस शामिल कर लें। हमारे अयूब लाला का मैसेज भी आया है, लेकिन सबसे पहले जो है यूसुफ भाई का मैसेज आया है पापूस से। उन्होंने सलाम अर्ज किया है और सबको उन्होंने बहुत बहुत सलाम कहा है और उसके साथ ही उन्होंने 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दी है तमाम सुनने वालों को। संजू भी आ गए हैं और संजू के भी माशाल्लाह से मैसेजेस बेतहाशा कह रही है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नदीम आपको, मोजज़ मेहमान मोहतरम बिलाल कादरी साहब को, रबीउल अव्वल स्पेशल जिक्र मुस्तफा।

0: वेलकम बैक कहेंगे तमाम सामाइन को। जी बिलाल भाई, हम जिक्र कर रहे थे विलादत बासआदत हजरत मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नौरीन भाई कह रही है मिलाद उन नबी तमाम मुसलमानों की को दिल की गहराइयों से मुबारक हो। ये बा बरकत दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी का दिन है। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर चलने और मोहब्बत और कुव्वत फैलाने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन सुमामीन। और मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये भी बात बता दूं कि अभी ये जो सिलसिला कार है, ये जो महफिल सजी हुई है, ये हम जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। आपकी हयात तय्यबा के हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी, जिंदगी किस तरह गुजारी, फिर उसके बाद कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। हम फी जमाना के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे कि हमारे हम कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे अमल क्या हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस इस हवाले से क्या कहती हैं, इस पर भी बात होगी। तो कंटिन्यू करते हैं आप बिलाल साहब।
1: तो पहले ये जो अभी आपने बात की असवाए हसना का थोड़ा सा नमूना ये बयान करें, या पहले वो जनाब हलीमा वाले,
0: जनाब हलीमा वाला ये जिक्र करेंगे क्योंकि वहीं से कंटिन्यू हुआ है और आप वो ही वाकया बता रहे थे कि जो
1: जी जनाब हलीमा जो है जब वो मक्का में आई, तो जिस वक्त वो पहुंची थी तो तकरीबन तमाम दाइयां जो थी जो आई थी मक्के में बच्चों को लेने के लिए वो लेके जा चुकी थी। अच्छा, जनाब हलीमा सादिया तीन रातें मक्का में घुसी उन्होंने गुजारी थी। इनके शौहर का नाम हारिस था,
0: हारिस,
1: ठीक है। अच्छा, इनके साथ एक और बच्चा था जो रिजाई भाई के तौर पे हादिस कुतुब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे बाकायदा बताया जाता है। तो जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आई तो कुदरती तौर पर जो उन्होंने एक महसूस की तब्दीली वो थी उनकी ऊंटनी का सेहतमंद हो
0: जाना,
1: और इतना सेहतमंद हो जाना कि जो दोनों मियां बीवी रास्ते भर में भूखे प्यासे थे वो उसके दूध से सैराब हो गए,
0: सैराब बिल्कुल ऐसे,
1: और उनके साथ जो बच्चा था वो भी सैराब हो गया
0: बिल्कुल ऐसे।
1: तो ये तो ये फिर ऊंटनी का सेहतमंद हो जाना, फिर दौड़ लगाना। इसी तरीके से जब वो हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब रास्ते में जा रही थी तो यहूदियों ने, जैसे आपने अभी पहले तस्करा किया, एक नेटवर्क फैलाया हुआ, तो उन्होंने बदबख्तों ने ये पहले ही मालूम कर लिया था कि मक्का से दाइयों का काफिला जा रहा है जिसमें बच्चे शामिल हैं। अच्छा, ये इनके बारे में कि ये जानते भी थे कि आखिरी नबी आएंगे मगर मानते नहीं थे, जब वक्त आया मानने का माने नहीं। अच्छा, इसकी भी बड़ी एक तफसील है जो इंशाल्लाह हम अगर कोशिश करूंगा कि कल मौका लगा तो इसके ऊपर बयान करूं। जनाब हलीमा सादिया अपने बच्चे के साथ और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर मौजूद थी एक मकाम पर जो कि ये समझ लें मक्के से कमोबेश 60 मील के फासले पर था, जहां ये वाकया जो है, इस पे फासले पे थोड़ा इख्तलाफ हो सकता है, बहरहाल मक्के से बाहर ये वाकया पेश आया। तो ये यहूदी जो है
0: जी,
1: ये तकरीबन 90 की तादाद मिलती है
0: जी, जी।
1: कि ये आए और इन्होंने उस काफिले को घेरा था। अच्छा, उसमें ये एक एक करके बच्चे को पहले चेक कर रहे थे
0: जी।
1: अच्छा, इनको पता था कि जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अच्छा लोग से भी बताते हैं कि नूर मोहम्मद ही से पहचाना था। अच्छा, वो तो खुद ही नूर एक बाहर आए, आप कैसे पहचाने। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक के दरमियान मोहर नबूवत थी
0: जी जी,
1: जिसको उन्हें पता था कि ये आएंगे। तो ये चेक करते जाते और हटाते जाते हटाते जाते, लेकिन जब वक्त आया ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का, तो उन तक पहुंचने से पहले अल्लाह ने फिर हिफाजत फरमाई
0: जी।
1: सफेद लिबास में गैबी तौर पर कुछ घुड़सवार आए और उन्होंने इनका जो हशर बिगाड़ा है
0: जी,
1: जो मतलब इनमें से फिर कोई जिंदा नहीं बचा था। और वो वाकया ऐसा हुआ कि जनाब हलीमा ने जब ये देखा कि ये क्या हुआ, ये कौन लोग थे, क्योंकि जब ये वाकया रोनुमा हुआ था, जाहिर सी बात है तलवारें वगैरह उस दौर में जिस तरह की भी लड़ाई हुई थी, तो जनाब हलीमा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक पहाड़ी, क्योंकि रेगिस्तान में तो पहाड़ ही होते हैं, वो एक चोटी के करीब जाके खड़े होकर उन्होंने बाकायदा ये सारा वाकया देखा था
0: जी।
1: और देखने के बाद उन्होंने

सुभान अल्लाह सुभान खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब गुजर खान से जो हमें शुजात मिर्जा ने ज्वाइन किया, कहते हैं जनाब खूबसूरत महफिल सजाने के अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। और उसको कहते भाई से एक कलाम की गुजारिश है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हुस्न रह जाएगा। कौन सा कलाम है, कोई है कलाम को और जनाब उसके बाद सालार समीर ने भी जवानी किया था, असलाम शोबे भाई वाले सलाम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पुरनूर में।

0: और जो पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ रहे, तो यकीनन आप किसी के लिए पढ़ रहे हैं, किसी के सामने किसी की खातिर पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं तो वो जहन में आपके जब होगा, मौजूद होगा कि मैं ये किसके लिए पढ़ रहा हूं, तो फिर उसी हिसाब से आपके जहन में अकीदत भी होगी, एहतराम भी होगा, आपके लफ्जों में ठहराव भी होगा, खूबसूरती भी होगी, मिठास भी होगी, एक लगन भी होगी, वो सिर्फ यही सोच के। मगर हमारे यहां मतलब वो ये कि हम ये नहीं सोचते कि हम पढ़ क्या रहे,
1: बिल्कुल,
0: और किस महफिल में पढ़ रहे हैं, मतलब किसके हजूर पढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है जी। एक तो ये पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं,
0: क्या हकीकत है,
1: एक ये पता हो, फिर ये पता हो कि इसके अंदर बात क्या है,
0: बात क्या है,
1: मतलब क्या है, मैं शेर पढ़ रहा हूं,
0: हकीकत
1: कम अज कम इतना पता होना चाहिए। हम भी आलिम फाजिल नहीं है,
0: नहीं नहीं,
1: लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जो चीज पढ़ रहे हो उसका पता हो कि ये है क्या।
0: देखे ना, अब हम आमतौर पर देखे ना, आप हम जो है अपने ऑफिसों में अपने बॉसेस के सामने जाते हैं, जब उनके सामने बोल रहे होते हैं तो मतलब अंदाज क्या होता है,
1: बिल्कुल,
0: मतलब आम दोस्तों के साथ बात गुफ्तगू का या बॉसेस के सामने गुफ्तगू का अंदाज अलग होता है ना, बिल्कुल, बड़ा डर के, बड़े एहतराम के साथ, बहुत मतलब बड़े सुलझे हुए लहजे में। और फिर नात, नात का मतलब है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूर सामने बैठ के उनकी तारीफ कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ एहतराम वो क्यों, एहतराम क्यों नहीं होता यहाँ, वो सब चीजें यहाँ क्यों नहीं होती, मतलब जो अल्लाह का हबीब है जिसके लिए रब ने सब कुछ बना दिया, तो उसकी जब आप उसका जिक्र कर रहे हैं तो वहां एहतराम क्यों नहीं आपके पास।
1: बिल्कुल जी, बड़ी एहतियात के साथ सरकार का जिक्र
0: बहुत वही, मगर ये मैं असल में कभी कभी कुछ लोग आते हैं ऐसे, तो मुझे फिर वो अच्छा, मेरी आदत बता अजीब सी है कि मैं ओनियरी बोल देता हूँ,
1: नहीं, नहीं,
0: मुझसे रहा नहीं जाता असल में, ये भी मेरी बड़ी बुरी सी आदत है,
1: कोई बात नहीं, इस चीज को मगर ये लेना चाहिए,
0: बस मैं सिर्फ ये कोशिश होती है कि मैं समझाऊं,
1: अगर कोई बड़ा जो है वो इस्लाह करता है तो उस चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए,
0: क्योंकि वो एक बात इस्लाह की है, समझने की, आप अगर आज आपकी समझ में आ जाएगी तो कल आप कहीं जाओगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे।
1: जी जी, बिल्कुल ऐसी
0: कि यार ये अपना आप देखो यार कितने एहतराम से,
1: चले तारीफ ना भी करें लेकिन आप मुतमैन तो होंगे ना यार कि मैंने अदब के अंदर रहकर,
0: ये सबसे बड़ी बात है,
1: कोई कह तो नहीं सकता कि मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, लेकिन कोशिश बंदा खलूस नियत से करे कि मैं सरकार की नात पढ़ रहा हूँ और जितना मुअद्दब तरीके से पढ़ सके,
0: क्योंकि वो अपने अंदर से अकीदत एहतराम उसके अंदर है ना, ये तो सब। और चलिए, मैं अब कौन सा कलाम शामिल कर रहे हैं, माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह,